0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पाकिस्तान खिलाफ मोदी की साजिश नाकाम बढ़ाई सिंधु जो पानी रोको वो तो जंग थी सिंतास माहदे से कदें बिठा न कंदी गिलगित बल्तिस्तान में वे वजीर के हलफ बरदारी तकरीब के खिताब कदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो चयो तो पाक फौज जंग में भारत के बर्तनाक शिकस्त दिनी भारत का शिकस्त हजम न थी रही है भारत हाने इसराइली मॉडल अख्तियार कयो मोदी अफगानिस्तान जरिए पाकिस्तान में मदाखलत करना चाहे तो पाकिस्तान जो अवाम मुतहद है दुश्मन की हर साजिश नाकाम कंदो गिलगित बल्तिस्तान में अवाम से कल वायदा पाड़ी समूरी जमायतों से गर्जी कम कंदी